मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत हिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है कट कट के पट पट की जान है जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ जेते

कहूं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

क्या कमाल का डुएट था. अब देखते हैं कि किसने सबसे पहले हमसे संपर्क किसने किया है. और जमीन अगर पर्दे पे देखूं तो कौन आते हैं हमारे पास. प्यार अली भाटिया. बहुत अच्छे प्यार अली भाटिया ने कहा, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स हाउ यू चूज टू लिव ईच डे. समीन बहुत अच्छे, हर दिन आपने अच्छी तरह से करना है प्लान. समटाइम्स यू हैव टू कीप योर गुड न्यूज़ टू योरसेल्फ, नॉट एवरीवन इज ट्रूली हैप्पी फॉर यू. ये कहा है सना ने कि कभी कुछ अच्छी खुशी की बात हो जाए तो अपने तक ही रखिए महदूद. चिराग पटेल गुड मॉर्निंग कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ. अमीर अली राणा, बीवी ने शौहर से पूछा, मेरे अलावा कितनी लड़कियों से मोहब्बत है? शौहर ने कहा, मेरे सर के बालों की तादाद में बीवी मेरे सर के बालों की तादाद है. कहते इतनी लड़कियां. बीवी ने रोना शुरू कर दिया और शाम तक रोती रही. फिर अचानक याद आया कि उसका शौहर तो टकला है और उसने कहा है कि जितने मेरे सर पे बाल हैं उतनी लड़कियां, और उसके सर पर एक भी बाल नहीं. मतलब क्या. तो फौरन उसके शौहर के सर को उसने चूम कर कहा, कुर्बान मेरे गंजे. अमीर अली राणा, आई एम श्योर ये आपने किसी पाकिस्तानी अखबार से लिया, मैगजीन से, पर अच्छा जोक था. मंगलवार की मंगल कामनाएं. वंदनीय परवीन जी, भरत गंगाराम, थैंक यू. लंदन वालों सलाम. और रंजन विनोद, आपने कहा है कि देखो हमारे यहाँ आए हुए थे, हैड वेरी गुड टाइम विद रिलेटिव्स फ्रॉम मुंबासा. मुंबासा से आए हुए थे लंदन, तो बहुत अच्छा लगा. रंजन विनोद भी यहीं से गई हुई हैं. ओके, द ब्लैक मांबा, ये आप जानते हैं समिन, बड़ा खतरनाक सांप है. द ब्लैक मांबा इज वन ऑफ द डेडलीस्ट स्नेक्स ऑन अर्थ, शमीम ने लिखा है साउथ अफ्रीका से. बट इट्स वेनम कंटेन्स अ सरप्राइजिंग सीक्रेट, जो उसका जहर है उसमें क्या है. कहते हैं फ्रेंच रिसर्चर्स ने देखा कि पेन रिलीविंग कॉम्पाउंड्स कॉल्ड मंबल जिन्स दैट वर्क एज इफेक्टिवली एज मॉर्फिन. जी हाँ, ये ब्लैक मांबा के जहर में सामिन वो सुला देने वाली जो दवाई है ना मॉर्फिन, वैसे हैं एलिमेंट्स इसमें भी हैं. और कहते हैं कि विदाउट द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऐसे नहीं कि आपका सांस बंद हो जाए आप इतना लें, नहीं. कहते हो ना ही इसकी आपको आदत होती है, बस आपने ब्लैक मांबा ढूंढना है पेन रिलीफ के लिए. तो क्यों नहीं दवाई में इस्तेमाल होता ये, मुझे नहीं समझ आ रही है. जयश्री थैंक यू. अब देखते हैं आशा भोसले को.

0: जी चाहता है जी चाहता है कितनी बार कहेंगे कल्पना कहती है हमने भी कहा था वी परफॉर्म दिस सॉन्ग निगाहें मिलाने को जी चाहता है कहाँ कहते हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था सालाना जो तकरीब थी मैं तकरीबन 10 या 12 साल की थी और हम 10 लड़कियां स्टेज पे बैठी हुई हैं आमने सामने और बस तालियां बजा रही हैं जी चाहता है जी चाहता है कर रही हैं हमारी टीचर बहुत अच्छी गायिका थी वो स्टेज पर नहीं थी पीछे बैठी हुई थी माइक के साथ गा वो रही थी और हम ये कर क्या बात है कल्पना बहुत अच्छी मेमोरी आपने हमें बताया इस तरह की समय ना आप भी बातें करें किसी भी गाने से आपको कुछ याद आ जाए तो ऑफ कोर्स हमारे साथ शेयर करेंगे और ये प्यार अली भाटिया ने मेरे ख्याल से इसी गाने के बारे में कुछ कहना है
1: ये निगाहें मिलाने को ये गाना फिल्म दिल ही तो है का है जिसको सैयद उद्वानी ने लिखा है और जिसकी धुन रोशन ने बनाई है ये मूवी में राज कपूर और नुसरत ने काम किया है गाना अच्छा लगा
0: क्या बात है और कल्पना हो सकता है कल्पना भी थी इस फिल्म में और आगे जो हैप्पी ट्यूसडे का पैगाम है बगैर नाम के सब मुझे अच्छा नहीं लगता कि बगैर नाम के आप अपना नाम गुप्त रखें तो आपका फायदा नहीं होता इसमें खैर समझ मैंने आपको बताया था ना कि वो भंगड़ा हुआ है क्यों किस लिए किया गया उसकी खबर आगे देती हूँ
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: East FM.
4: It's 10:20.
5: Imagine getting rewarded for the transaction fees you pay. With Airtel Money, every time you send money to any network, you get 50% back of your transaction fees into your cashback wallet. Buy electricity tokens and you'll get your units plus 50% cashback. And Airtel to Airtel, absolutely free. Why let transaction fees take your money when they can put that money back in your pocket with Airtel Money? Airtel Money. Download the My Airtel app or dial *334#.
2: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
4: East FM.
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

और समय आम आदमी पार्टी आप तो जानते हैं भारत में बड़ी मशहूर हुई थी, क्या तारीख है इनकी। खैर, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी कर दी। तो वीडियो हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, यानी आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई कोई योजना है तो स्कीम जो है हेल्थ प्रोटेक्शन, कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ये पार्टी करती है आम आदमी पार्टी। तो इसका विज्ञापन जब बना, एडवर्टाइजमेंट, तो वीडियो बनाई। आज़ादी दिवस 15 अगस्त, 70-75 साल के सिख आदमी लिए, उनसे भंगड़ा करवा रहे हैं, वो भंगड़ा करते दिखा रहे हैं, देखे जा सकते हैं। और दावा क्या किया आम आदमी पार्टी ने, सरकार है इनकी पंजाब में, कहा कि ये ना शहरियों को हेल्थ कार्ड देकर मदद कर रही है पार्टी, पंजाब में इनकी तो नहीं, लेकिन वो मदद कर रहे हैं शहरियों की हेल्थ कार्ड देकर। और देखें ये बुजुर्ग कितना भंगड़ा करें, इन सब की नी रिप्लेसमेंट करवाई गई है, नी रिप्लेसमेंट, हाँ हाँ, 10 लाख रुपए देकर हमने इनकी नी रिप्लेस की है, अब ये भंगड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ऑपोजिशन ने वो लताड़ा है इनको, कहना है कि ये घटिया वीडियो, वीडियो में लगता भी नहीं कि इनके घुटने नए हैं, इनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो वो इस तरह से नहीं नाचते। दिस इज अ स्पेक्टिकल ऑफ लाइज, ये ऑपोजिशन ने कहा है कि झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है आम आदमी पार्टी, और वो भी बेचारे उम्र रसीदा ओवर 70s को लेकर ये बना दी है वीडियो।

0: आरफा फ्रॉम ओंगाटा रोंगाई कहती हैं, आह क्या बात है, कई गाने निगाह पे। जी जी कुछ थे लेकिन आप इंजॉय कर रही हैं। कल भी आपने म्यूजिक इंजॉय किया था, आपका मैसेज जरा लेट मिला। और समझ सैली डार इन लंदन क्या कहती, कहती नेवर लूज द वर्जन ऑफ यू हु स्टिल बिलीव समथिंग ब्यूटिफुल इज ऑन द वे। कहती हैं साहब क्या है कि ये मत, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि कुछ खूबसूरत आने वाला है। कुछ लोग मायूस भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल,
1: जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा अहमद किसुम।
0: या कुछ लोग आपके दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए उतर जाते हैं, वाकई सलमा।
2: प्रवीण जी फिर मुझे प्यार से है, ये गाना फिल्म फिर सुबह होगी का है जिसको मुकेश और आशा भोसले ने गाया है और जिसकी धुन खयाम ने बनाई है। ये मूवी में राज कपूर और मलाशिया था, वो ये गाना ये दोनों पे फिल्माया गया है, गाना अच्छा लगा।
0: और आगे जो मैंने आपको बताना है समय, उसका ताल्लुक हम एशियन जब बच्चे को देखते हैं, हमारी है फितरत ही है, हम बात करना चाहते हैं बच्चे के, गाल छूना चाहते हैं, उसके सर को स्ट्रोक करना चाहते हैं, अच्छा लगता है। और जो माँ बाप होते हैं वो खुश होते हैं, ओ उनको मेरा बच्चा बड़ा पसंद आया है। अच्छा ठीक है, उस पर एक छोटी सी खबर है, ये पहले ब्रेक लेते हैं।
3: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM, Asian Mix. This is East FM, Kenya's premier Asian Mix. More of Kenya's premier Asian Mix. East FM. We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian Mix.

0: बात है तलत महमूद की। अब सामने है अजय पाल।
1: जोक सुनाया था वो कि सर वो गंजे पत्नी खुश हो गई कि सर पे एक बाल भी नहीं है, और जैसे ही पति बाहर निकले घर से और उन्होंने अपने बैग से विग निकाली और विग लगा ली, अब तो बाल ही बाल थे सर पे। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद समझ गए होंगे आप, थैंक यू जी।
0: वो लड़कियों को जो छेड़ता, कितनी लड़कियों के साथ आप बात करते उस पर, या दैट्स अ गुड आइडिया अजय पाल के, रखी हुई थी विग भी, उसको नहीं पता था, उसको लगा कि उसका पति गंजा ही है। अच्छा समय, हम एशियाई बच्चों को देखकर, किसी का भी बच्चा हो, कितने खुश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय सिंगापुर की पुलिस आ गई है, जी जी, एक वाकये की जांच कर रही है। हुआ क्या कि एक आदमी छोटी सी लड़की के सर पर हाथ फेरता है, ये 70 साल से ऊपर उम्र है, 73 साल का है, सिंगापुर में ये वाकया हुआ है। तो बस बच्ची के बाप ने क्या किया, बच्ची की माँ ने पहले तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि हाथ लगाया है मेरे बच्चे को, फिर बाप आया, बाप ने 73 साल आदमी को गाली देनी शुरू कर दी। आदमी का छोटा सा स्टॉल है वहाँ खाने का, तो उसने कहा मैं तो यहाँ से गुजर, बच्चे का उसने कहा होगा कि मासूमियत में हाथ फेर दिया उसके सर पर, गाली गलोच हो गई, उसका बाजू पकड़कर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। क्योंकि ये जो आदमी था बच्चे का बाप, वो 40 साल का था, बुजुर्ग को नीचे गिरा दिया। बुजुर्ग के साथ पब्लिक जो देख रही थी कि क्या हुआ है, सब ने हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन बेचारा बुजुर्ग हॉस्पिटल पहुंच गया, उसी उसकी कमर में तकलीफ, ऑफ कोर्स इस उम्र में कोई आपको गिराएगा तो यही होगा। सर मुझे बताएं कि आपके बच्चे को कोई छूता है, कोई बात करता है और गुजर जाता है एक सेकंड में, हर चला जाता है, तो क्यों उनको इतना गुस्सा आया, क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है कि वालदैन के दिमाग में क्या आ रहा था कि इतना गुस्सा हो गए, मारपीट हो गई। 07011106106 पर बताएं क्यों ऐसा हुआ होगा।
2: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

0: अश्विन दोषी वो नहीं हमेशा कहते ओके ओवर टू यू, तो मैं भी यही कहूंगी, मैंने गाना सुना दिया, नाउ इट्स ओवर टू यू।
1: मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि ये ब्यूटीफुल ड्यूएट है प्रवीण जी,
0: मुझे बहुत पसंद।
1: यस, ये थी फिल्म माया फिल्म थी
0: ओके,
1: जो जिसपे पर्दे पे देवानंद और मलसिया गा रहे।
0: ओके, मुझे लगा कि इस फिल्म में शायद नूतन है।
1: नहीं,
0: मलसिया
1: म्यूजिक सलील चौधरी और गीत सभी लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने।
0: अच्छा,
1: स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। देवानंद एक अमीर बाप का लड़का था और वो अमीरी देख के तंग आ गया था क्योंकि सभी सब कुछ आर्टिफिशियल था, सभी उनको प्यार करते थे, ये करता थे, लेकिन क्योंकि वो एक पैसे वाले का बेटा था,
0: बेटा बिल्कुल।
1: फिर देन ही चेंजेस हिज हिमसेल्फ, एक बस्ती में जाता है
0: ओके,
1: उधर ठहरता है, उधर क्या एक्सपीरियंस मिलता है, ने सच्चे आदमी, सच्चे फ्रेंडशिप, सच्ची वो रियलाइज करता है, ऐसी स्टोरी थी।
0: बहुत अच्छी स्टोरी हो, फिल्म का नाम भी अच्छा रखा माया।
1: माया और फिल्म पर भी जी हिट हो गई।
0: ऑफ कोर्स, अच्छा,
1: या
0: गुड आईडिया।
1: तो इट वाज अ नाइस मूवी पर जी, मजा आ गया, देवानंद की एक्टिंग, मला सिन्हा की एक्टिंग और सलील चौधरी का म्यूजिक,
0: वाह क्या बात है। थैंक यू अश्विन। और समझ, अच्छा आइडिया जिसने भी लिखी माया की कहानी। और रसिला कहती हैं श्री औरोबिंदो कौन थे? इंडियन फिलोसोफर, योगी, नेशनलिस्ट। वो ही इज नोटेड फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी में उनका बड़ा किरदार था श्री औरोबिंदो का। तो ब्रिटिश साम्राज्य से इंडिया को आज़ाद करवाने में इनका भी काम था। ही एडवोकेटेड फॉर कंप्लीट ऑटोनॉमी थ्रू हिज राइटिंग्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। अच्छा रसीला, अगर ये है कंप्लीट ऑटोनॉमी, तो मुझे बताएं क्या श्री औरोबिंदो तकसीम हिंदुस्तान के हक में थे, पार्टीशन के नहीं, ये बताएं।

0: जी कृष्ण सर आप एयर पर हैं, मुझे बताएं कि क्यों क्यों ऐसा व्यवहार ठीक नहीं लगता।
1: हेलो
0: जी जी
1: प्रवीण जी, लीडर जो होता है ना इज एग्जांपलरी फिगर टू द मासेस, यू नो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि उसके एग्जांपलरी नहीं है तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे प्रवीण जी। ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने से लीडर का इमेज खराब हो जाता है यू। हालांकि तो बैड बैड एलिमेंट तो सब लीडरों में है, लेकिन पब्लिकली ये नहीं होना चाहिए प्रवीण जी, इसको बुरा समझा जाता है।
0: बिल्कुल, लीडर को भी समझाने वाले आसपास जो सलाहकार हैं वो भी नहीं बताते। वो हर जगह पर ये एक्ट्रेस होती हैं और कोई नामो निशान नहीं बीवी का।
1: प्रवीण जी, कोई भी हो आप मोदी साहब ने मिलोनी से मिले प्रवीण जी, कांग्रेस ने इतने भद्दे शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए कि बहुत बुरा लगा प्रवीण जी।
0: अच्छा,
1: के प्राइवेसी इनकी मिलोनी के साथ क्यों थी, उसके घर पे क्यों गए।
0: नहीं नहीं, ये तो फजूल, क्योंकि वो तो जनाब मोदी तो बिल्कुल डिसिप्लिन
1: किसी का माथे पर थोड़ी लिखा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक,
1: स्लिप हो सकते हैं जो जो भी मरा है उससे 10 फाइल्स का वो और क्या था, यही था।
0: राइट राइट। अच्छा समीन, मुझे एक बात बताएं कि आप खुल्लम खुला डिस्प्ले कर रहे हैं आपको प्यार है, आपका बेटा जवान है, 20-22 साल का है, आपकी बीवी भी देख रही होगी ये सारा समा, उन पर क्या गुजरती है? बेशक आप नहीं भी इकट्ठे, लेकिन उन पर गुजरती क्या होगी, कितनी बददुआएं निकलती होंगी, ये तो मेरा जरा इमोशनल सा हो गया है। लेकिन जो अवाम है वो आपको साइज अप करती है। और धीरू भाई लखानी बहुत अच्छे, चंद्रिका वासंत गोसाई बहुत खूब, और सलीम मेहर।
2: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। नो मैटर वे यू आर इन लाइफ, इफ यू लेट योर लव एंड काइंडनेस टू बी योर गाइड, यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे। Good morning, Praveen ji, to you and all your lovely Bemisal listeners. It's good to be back. Have a lovely day.
0: Good. समय ये जो सलीम मेहर लव एंड काइंडनेस की बात करके गए हैं ना, वो सिर्फ बात नहीं करते, इस पर अमल भी करते हैं। काइंडनेस इनमें इतनी है कि गए दिनों किसी ने इनको कोई सजेशन दी कि हम ऐसा करें ऐसा करें, एकदम से समय अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया, मैं करूँगा, खड़ा हो गूं। और ये नहीं कि अल्फाज के साथ, बिल्कुल जो कहा वो करके दिखाया। क्या मदद दी, काश मैं आपको बता भी सकती, पर हैट्स ऑफ टू सलीम मेहर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आज यासर कहते हैं 18 अगस्त 1960, ब्रिटिश कैनियन जेरल्ड पूल वॉज हैंग्ड इन केनिया ड्यूरिंग द कलोनियल एरा, रियली मार्किंग अ रेयर एंड नोटेबल हिस्टोरिकल इंस्टेंस ऑफ अ वाइट मैन एग्जीक्यूटेड अंडर ब्रिटिश रूल इन ओवर 70 years। रीजन, 12th October 1959, पूल वॉज चार्ज विद किलिंग कमावे मुसुंगे हिज हाउस बॉय इन गॉर्डन रोड। रियली मुझे लगता है गॉर्डन रोड रिवर रोड थी। अच्छा ये कहा यासर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कहते हैं कि 1960 आज के दिन एक यहाँ गोरा सेटलर, उसको फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने नौकर को कत्ल किया था। और आज बर्थडे ऑफ गुलजार, संपूर्ण सिंह कालड़ा वॉज बॉर्न इन 34, द आइकॉनिक पोएट लिरिसिस्ट एंड डायरेक्टर, स्टार्टेड हिज करियर 63 with the film Bandini. He has won an Academy Award, a Grammy Award, numerous national awards for his timeless contributions to Hindi cinema. Bilkul maya naz shair hain Gulzar. Bahut khub, ab dil ke afsane. Samin, kya nagma hai? Aayi.

0: और सबसे पहले दो जवाब आ गए। एक का जवाब बिल्कुल करेक्ट है और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कृष्ण सर्वे, आपने कॉल किया, आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी, तो मैं ये कहना चाहती थी कि पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला 80 साल बाद किया है, ये बात पहले की है, इसलिए आपको नाम बदलना पड़ेगा, कृष्ण सर्वे। बाकी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन पहले ब्रेक।
1: Kenya's premier Asian mix,
2: East FM,
1: is celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
2: East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
3: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs, or a segment of a program? There are a number of ways you can make a complaint or comment. You can send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.
1: East FM.
3: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: ये लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ।

0: और सर मुझे बताना चाहिए था कि ये 78-80 साल के बाद पुरस्कार दिया जा रहा है। कृष्ण सर एकदम से फट से उन्होंने सही जवाब दे दिया है, वेल डन।
1: हेलो परवीन जी, मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है अरुणा ईरानी। अभी एक रियलिटी शो में देखा था, इतनी यंग लग रही है और इतनी स्मार्ट लगती थी रियली। ये गाना जो दिल भर दिल से प्यारे, मुझे बहुत ही पसंद है। बजाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे रियली आई लव हर, उसकी एक्टिंग सभी बहुत पसंद है। दूसरी बात, आपने जो सिंगापुर की बात बताई थी ना, वो बच्चे के साथ खेल रहा था तो उसके फादर ने मिसबिहेव किया, वो 73 ईयर्स ओल्ड। अभी देखो, मुझे तो बच्चे इतने पसंद है, मैं कोई भी बच्चा अच्छा सा देखती हूँ तो मैं उसको जाके बहुत प्यार करने लगती हूँ, खेलने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। तो ऐसा बिहेव कर रहा है, इट इज अगेंस्ट द रूल, बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोई भी बच्चा तो प्यारा सा हो तो हम उसके साथ जरूर से खेलेंगे, ये बिहेवियर तो बहुत खराब है और हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई बाहर सिंगापुर का है इसलिए ऐसा बिहेव किया। रियली थैंक यू सो मच नीला शेठ।
0: पर नीला, मैंने देखे हैं वीडियोस ऑफ जो चाइल्ड किडनैपर्स हैं, एबडक्ट कर लेते हैं बच्चे को और बच्चा 3-4-5 साल का है, उसका हाथ पकड़ के वो चल रहा है, बच्चे को पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है, जहन्नम में। और वो कोई स्ट्रेंजर भी होगा ना, बच्चा कई बार चल देता है। अब लोग बहुत खौफ में हैं क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग कितनी ज़्यादा आम हो रही है। और जैसे आपने कहा, बच्चे को देखकर मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चे के, वो बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत वेरी होते हैं और नहीं चाहते वो बच्चे के साथ बात करने लग पड़ेंगे, उसके मुँह का रुख बदल देंगे ताकि वो आपकी तरफ ना देखे। इट्स सच अ पिटी, ऐसे हालात हो गए हैं। चिराग पटेल, बिल्कुल आंसर फ्रॉम कराटीना, करेक्ट। चंद्रिका वासंत गोसाई, आपने म्यूजिक के बारे में कहा है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने कहा कि उनका पहला आंसर था करेक्ट। और अमीर अली राणा, बिल्कुल सही। बीना पटेल, जवाब आपका भी दुरुस्त है। और जो हैं फातिमा कासम अली, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। दिनेश और शोभना का भी गलत नहीं होगा, जी हाँ मैं देख रही हूँ, उन्होंने सारी मुझे डिटेल दे दी है। और आशा भीमानी, आपने क्या कहा है, कमाल का आंसर है, कोई मतलब के जवाब गलत है ही नहीं। मिसिस धंजल ने भी जवाब देना है, उनकी बात सुनते हैं।
2: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। प्रवीण जी, आपने जो पाकिस्तान के नेता का नाम पूछा है, उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसको तपेदिक और टीबी भी बोलते हैं। उनका इलाज दो बॉम्बे के पारसी डॉक्टर ने किया था और उनको 78 ईयर के बाद टॉप सिविलियन अवार्ड से नवाजा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
0: बिल्कुल, मिसेस धंजल ने आपको बता दिया है कि किसको ये मोहम्मद अली जिन्ना, और आप सब ने मुझे जवाब भी दिया बहुत अच्छे। और डॉक्टर साहब का भी मैं चाहती हूँ कि सुना ही दूँ कि उन्होंने क्या कहा था।
3: प्रवीण जी, आई थिंक लेट मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना दा ट्रीटमेंट जिहड़े दो डॉक्टर्स ने कीता सीगा ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਤਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ।
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਨਕੋ ਟੀਬੀ ਥੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਧੰਜਲ ਕਹਿ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, तो इतना वेट लॉस हुआ था, फिर उनको जाके किसी सैनिटोरियम में भी रखा और इलाज हुआ, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा बहुत। और ये इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद, वो तो एक साल भी इंडिपेंडेंस नहीं देख सके, जो बानी थे पाकिस्तान के, तो अब जाके 80 साल बाद ना वो रहे, ना डॉक्टर्स रहे, ना उस जमाने के हुकाम रहे, तो अब ये पुरस्कार मुझे नहीं पता कि कितना अहम है, लेकिन मतलब वक्त गुजर गया है पूरा।

अब देखते हैं समीर, मैंने आपको एक छोटी सी छोटा सा मुहावरा पूछना है, अगले घंटे में आप जवाब देंगे, पर पूछ लेती हूँ अभी। हो सकता है कि ये मुहावरा भारत में इतना इस्तेमाल भी ना होता हो, पर मैं आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन दूंगी, वो उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा और वो बन जाएगा मुहावरा। तो करना क्या है समझ, हो सकता है कि आप किसी को अपनी कहानी सुना रहे हैं, दास्तान कि क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ समय, आधा घंटा गुजर जाता है, एक घंटा गुजर जाता है, आपकी कहानी ख़त्म नहीं हो रही, आपने क्योंकि ना ब्रीफ नहीं ना किया उसको, तो ना कोई कहता है कि ये आपकी दास्तान है कि डैश की डैश है, ये कहानी है कि डैश की डैश, क्योंकि ये तो इसका अंत ही नहीं आ रहा, इतनी लंबी कहानी। तो समझ, ये क्या हो सकता है मुहावरा, ये कहानी है आपकी दास्तान के डैश की डैश है। ओके, ट्राई करें 0701 106 106। और कहते हैं ना कि धार्मिक कलाम होना चाहिए, तो आज भी एक

0: Coast FM, Kenya's premier Asian mix.
1: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
2: The Linda Mwananchi movement is set to tour Meru County on August 30th, just weeks after its campaign in Homa Bay was disrupted by violence. The tour will be led by Nairobi Senator Edwin Sifuna and other leaders as the movement continues its mobilization drive across the country. The 7 billion Kenyan shillings near the bridge project in Tawakanithi County has moved closer to construction after the National Land Commission began the final inquiry into land acquisition for the proposed new alignment. NLC Commissioner Vincent Kigen said valuation of properties affected by the project had been completed, with the commission now undertaking the final computation of compensation before payments are made to landowners. Kigen said the computation process will take about 3 weeks, after which compensation will be processed based on valuation conducted on the ground.
3: The National Land Commission is to ensure that all the people who are affected by the project are compensated fairly, promptly, and in a just manner.
4: We'll pay as per the size of land, the value of that land, and the size of the improvements and the value of that improvement.
2: Political analyst Herman Manyora says ODM's support for President William Ruto and Raila Odinga's former strongholds may face resistance because of emerging divisions within the party. Manyora says some voters could back Ruto, but without enthusiasm, citing the treatment of leaders including Edwin Sifuna and Godfrey Osotsi. He says regional political dynamics, community loyalties, and dissatisfaction within ODM could determine how Western Kenya votes in 2027.
5: Within Luo Nyanza itself, and you've seen Homa Bay, that resistance signals the obvious fact that there is very serious division. The second strongest part for ODM was the Mlembe Nation. With the treatment that was accorded to Sifuna, there will be a bit of challenge there.
2: Mixed reactions continue to emerge among political analysts following former Gender and Culture Cabinet Secretary Aisha Jumu was moved to the Wiper Patriotic Front, led by Stephen Kalonzo Musyoka. Kenneth Loach says voters should critically assess Jumu's performance throughout the various positions she has held in government, as scrutiny that will help Kenyans determine whether she deserves their support for any leadership position in future elections.
6: Si ati tufuate mtu kwa sababu ya chama. Tunaangalia mtu kulingana na sera yake na nini anafanyia wananchi. Yeye hiyo muda alipewa, yani kama waziri, nini alifanyia watu wa Kilifi? Ni watu wangapi aliwajiri kazi? Ni mradi gani alileta?
2: That's the news update on East FM.
0: All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
7: एक देखते हैं क्या आवाज आई है.
8: परवीन जी नमस्ते, मैं अशोक बोल रहा हूँ इटली से, और अभी मैं छुट्टी में हूँ तो मैंने सोचा आपका जो प्रोग्राम है सुन लूँ. आपकी आवाज सभी को प्यार भरा नमस्ते. और मैंने बात किया था मनहर भाई से, हम 1 सितंबर को मिलने वाले थे पेरिस में, तो मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि मैं 20 से काम लूँगा, तो 5 सितंबर तक काम करूँगा. और मैं सोचता हूँ जो जो आपके दीवाने हैं प्रवीण जी, जो बहुत सुनते हैं, आपके लिए तरसते हैं, एक दिन अगर आपने आँख बंद कर दिया ना, तो वो लोग खुद ब खुद बिन बीमारी के मर जाएंगे. मैं तो निकल गया हूँ, मैं तो बहुत क्लोज था, बहुत बहुत क्लोज था आपके, मुझे निकलना पड़ा, नहीं तो मैं रो दूँगा. सो एवरीबॉडी हैव ए नाइस डे, प्यार वाली भटिया को भी और सभी सुनने वालों को, थैंक यू.
7: I'm so glad कि आप वापस आए हैं. मुझे पता था कि आपने अपना नाम गुप्त कर लिया है for some reason, maybe you know better. But I'm so happy कि आप वापस आए हैं, क्योंकि every day का मैसेज हमें इटली से, आपको याद है ना कि इटली के हमारे लिसनर थे, रोजाना मैसेज किया करते थे and very good answers भी दिया करते थे. I'm happy and welcome back. अब देखते हैं कि किसने आंसर किया है. अच्छा, मैंने कहा कि आपकी दास्तान है कि ख़त्म ही नहीं हो रही, ये आपकी दास्तान है कि डैश की डैश है. तो लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि हो सकता है ये फिल्म की स्टोरी है. नहीं, फिल्म की तो स्टोरी छोटी भी हो सकती है ना. अमीर अली राणा कहते हैं ये आपकी दास्तान है कि फिल्म की कहानी है? नहीं नहीं रितु गुप्ता, ये आपकी दास्तान है या किसी के आप बीती है? नो, मुझे पता था कि ये आंसर मुश्किल से मुझे मिलेगा आपसे।
9: हेलो प्रवीण जी, अक्सर बोलचाल की भाषा में ऐसा कह देते हैं तुम कहानी सुना रहे हो या रामायण।
7: हाँ हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन डैश की डैश ठीक है ना, डैश की डैश। अच्छा, किस्सा खत्म नहीं हो रहा, आपकी राम कहानी है, खत्म ही नहीं हो रही राम कहानी। अगर तो मैंने कहा होता कि डैश डैश ओके, लेकिन मैंने कहा डैश की डैश है, तो राम की कहानी हो सकता था। एमएल विश्वकर्मा फ्रॉम इंडिया। अच्छा, द अवार्ड निशाने इम्तियाज पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर was given to Dr. Jal Ratanji Patel and a Parsi radiologist from Bombay. It was awarded posthumously. Iska matlab marne ke baad. The award ceremony took place, is set to be formally conferred in March. 2027 jab March aayega to ye ek taqreeb mein diya jayega ye nishan-e-imtiaz. Though this awarded so late due to its political and national security implications, nevertheless, deserving awards and recognition should be given timely. Very true, yes, sir. Timely, not when they are sitting on a wheelchair. Manjula Vishwakarma, aapki to Ramayan ki khatam hi nahi ho rahi hai. Achha, Manjula, ek aur bhi hai, main aapko English mein dungi. लंबी राम कहानी, लामत नहीं कहानी नहीं। चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना, आपने ये जो आखिरी कहा है लामुत नहीं कहानी, अच्छा अंत है इनकी नहीं। अब आए हैं डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा है? मुल्ला नसरुद्दीन की खिचड़ी है, बीरबल की खिचड़ी जो पक नहीं रही। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ ये भी हो सकता है, डॉक्टर साहब ने कहा है ये तुम्हारी कहानी है कि अल्फ लैला की कहानी है। ओके
10: हाँ प्रवीण जी, आई थिंक जो आप अल्फ लैला की कहानी ये तुम्हारी कहानी है या डैश डैश की डैश डैश ये तुम्हारी कहानी है या अल्फ लैला की कहानी है। दूसरा ये है मेरे दिमाग में आ रहा कि तुम्हारी कहानी है या मुल्ला नसरुद्दीन की खिचड़ी या कहानी, और दूसरा ये बीरबल की खिचड़ी जो पकी नहीं रही।
7: अच्छा अगर ये भी है तो डॉक्टर साहब थे ना, आई हैव टू से कि बिल्कुल आप राइट हैं। अगर ये बीरबल की खिचड़ी तो फिर मुझे इसको करेक्ट करना, या मुल्ला नसीरुद्दीन की खिचड़ी है। वाह क्या बात है, ओके दैट वुड बी वन ऑप्शन करेक्ट। ओके मंजुला गोरसिया, ये कहानी आपकी दास्तान है कि किस्सा मुख्तसर है? नहीं, अगर मुख्तसर का मतलब है शॉर्ट, ठीक है छोटा, तो मैंने तो कहा है ये कहानी बहुत लंबी है, ठीक है ना मंजुला गोरसिया। ओके बीना पटेल, कहानियों का पहाड़ है। ओके नहीं कहानियों का पहाड़ नहीं। ओके लक्ष्मी, ये खत्म नहीं होने वाली हनुमान जी की पूछ जैसे। अच्छा हनुमान जी की पूछ जैसे, ओके नहीं। बिंदु फ्रॉम जयपुर, सभी को नमस्कार। बीरबल की खिचड़ी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है ना, डॉक्टर राजेंद्र बिंदु ने जयपुर से यही कहा कि बीरबल की खिचड़ी That may gives me something to think about. बिल्कुल करेक्ट। अच्छा फिर सना, घर नहीं नहीं घर घर की कहानी नहीं है ये, और मिसेस धंजल से पूछ लेते हैं, ठीक है ना।
11: हेलो प्रवीण जी, मैं बताती हूँ लेकिन पता नहीं राइट है कि रॉन्ग। आपकी राम कहानी तो हनुमान जी की पूछ की तरह, हनुमान की पूछ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।
7: इवन दैट इज करेक्ट, हनुमान की पूछ, वो खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी है कि किसकी, तो बिल्कुल करेक्ट है वो। और यहाँ पर हैं दर्शन
12: जी, सलाम। हम तो ऐसे सीधा बोल देते हैं कि ये आपकी कहानी है कि ये रोना सोना हो रहा है। बस सिंह लोटे, थैंक यू।
13: ठीक है ना मंजूरा गोरसिया, ओके।
7: फिर मेरी ही आवाज मुझे आने लगती है, ओके। समिन, आपको मैं अगर कहूं कि ये जो हमारी होती है ना लॉन्ग इंटेस्टिन, इंटेस्टिन होता है लफ्ज, वो इतनी लंबी है ना जाने कितने मीटर लंबी है, ओके। अब आपने इंटेस्टिन इस्तेमाल करना है, फिर किसी की भी इंटेस्टिन बना लें। हमने ये जो सुनी पढ़ी है ना वो है द डेवल। हम द डेवल को क्या कहते हैं, हमारे पास काफ़ी नाम है, रावण है, हम भी मुसलमान जो होते हैं वो भी कुछ कहते हैं डेवल को, तो ये इंटेस्टिन है डेवल की जो ख़त्म नहीं हो रही, तो इसको बना लें छोटे से दो, बस डैश की डैश है ये आपकी दास्तान है कि डैश की डैश। सो किसकी इंटेस्टिन है ये, किसी को भी डाल दें मैं, दैट विल नॉट बी रॉन्ग। 07011061106

0: Mrs. Patel thoroughly enjoying the songs. वो कहती हैं कि अभी अभी आपने गाना सुनाया था मरना तेरी गली में. कहती है फिल्म शबाब कमाल की फिल्म थी और ब्यूटीफुल गाना म्यूजिक नूतन और भारत भूषण. मिसेस पटेल बहुत शुक्रिया आपका. अब देखते हैं डैश की डैश. मैंने कहा इंटेस्टिन ठीक है ना, तो अब सबसे पहले मिसेस धंजल को सुनते हैं क्या कहा है.
1: हाँ प्रवीण जी, ये आप कह सकते हैं शैतान की आंत. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे मिस धंजल.
0: मिस धंजल कोई आपको पीछे से कह रहा था, प्रॉम्प्ट कर रहा था. बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर मिस धंजल. अच्छा बिल्कुल अमीर अली राणा, शैतान की आंत है. मुझे लगा आपको आंत नहीं आएगा. चिराग पटेल बिल्कुल कैरेटीना से, शैतान की आंत है. सोनल मोदा ने कहा है रावण की आंत. आई वुड हैव टू एक्सेप्ट दैट. और कहते हैं कि जी सोनल लाइट चली जाए कोई नहीं, आप मेरा सवाल भी आ गया और आपका जवाब भी आ गया, सो लेट द लाइट गो. और रितु गुप्ता दास्तानी जिंदगी नो. दिनेश शाह आपकी दास्तान है कि हनुमान की पूंछ है, ये भी करेक्ट है दिनेश शाह. मैंने पहले ही कहा कि ये भी करेक्ट होगा. और कहते हैं दास्तान इज अ स्टोरी, अ टेल विच इज़ वेरी लॉन्ग, कभी ख़त्म ना होने वाली. रामायण तो कभी ख़त्म कभी नहीं होती. ओके रुखसाना शबीर ये आपने कहा है. और यासर ने भी सही जवाब दे दिया था पहले ही, शैतान की आंत. अब यासर को शायद पता हो कि क्यों शैतान की आंत कहा है.